एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स

जति पकाए नि मान्दिन कानाछी के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेक बेसीको धुन, रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 10 AM
3: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

समझ बैलेंस एटीट्यूड तुला पूरा करने मेरा अगले सदन मोट यार्ड में स्विमिंग पूल साइड में सानो बार अक्सर हिंचू स्कूटी में घर में मेरे कार

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तबले हरि बोल वैकुंठमा जानलाई मनको झोका खोल हरि बोल हरि बोल हरि